0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Breakfast brought to you by Jator UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
1: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
2: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते. सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा. अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे.
0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक मॉर्निंग स्टार बजकर 11 मिनट।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 92. The Beat of Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जादेरा, रसलखोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
3: Wow, your hair color looks stunning.
4: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
3: Yeah, right.
4: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
3: Really?
4: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
3: I'm buying it right now.
4: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
0: The Big Mix with Zora. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: बर्फ नहीं पड़ने वाली, गर्मी बढ़ने वाली, दैट्स व्हाट द प्रेडिक्शन इज बाय द एनसीएम। 34 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी एट 68%। नाइस सनी वार्म स्टार्ट टू दिस मंडे एज एक्सपेक्टेड, विंड्स ब्लोइंग एट 13 किलोमीटर पर आवर, हाईज ऑफ 39 राइट नाउ, लोज ऑफ 34 डिग्री सेल्सियस।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: It's 7:42 on the clock. Aur kal ka aapne, I want to say, prize distribution ceremony dekha? Nahi, it's the trophy ceremony dekha ki nahi?
0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: The FIFA World Cup 2026 came to a close yesterday. Spain defeated Argentina 1-0. Matlab extra time chahiye tha. Both the teams were like equally matched, I'd say. But a certain Messi did not score a goal. But then, yeah, Spain won the World Cup after 16 years. But more in the news was the post-match presentation ceremony. ये तो क्रिकेट में बोलते हैं, लेकिन I don't know football में क्या बोलते हैं. But वही effectively it's the same thing. But who stole the limelight? A certain Mr. Donald Trump, who refused to leave the stage. At one point, Spain के कैप्टन को थोड़ा इशारा भी करना पड़ा, भाई अब कहती थी तुम कब जाओगे? वाला सिचुएशन वहाँ पर हो गया था. एंड देन इन्फेंटिनो दी फीफा यू नो हेड आल्सो हैड टू काइंड ऑफ विस्पर इन ट्रम्प्स ईयर, सर अब थोड़ा सा शायद ज़्यादा, आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है. यू माइट आई एम सेइंग माइट वांट टू लेट द प्लेयर्स काइंड ऑफ सेलिब्रेट देयर हार्ड अर्न्ड विक्ट्री. एंड देन इट डॉन्ड अपॉन हिम, थोड़ा सा साइड में हो गया, ऐसा नहीं कि स्टेज छोड़ के चला गया, थोड़ा सा साइड में हो गया. सो ही वॉज ऑन द स्टेज while the Spain players were like jumping with the trophy. At one point they kind of had to just ignore the fact that Donald Trump was standing to the side. Actually it reminds me of an Indian politician. Okay, let's see ke subah savere how big a cricket fan are you, kitne up and running aap feel kar rahe hain. When I say a politician who refuses to leave the stage, आपको कौन से इंडियन पॉलिटिशियन की याद आती है? वर्ल्ड कप था, ऑस्ट्रेलिया वन द वर्ल्ड कप, एंड देन रिकी पॉन्टिंग हैड टू लिटरली पुश हिम ऑफ द स्टेज, जो कि बहुत बड़ा एक बखेड़ा भी बन गया था. इफ यू आर रिमेंबरिंग द नेम देन गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.
0: बिग 106.2.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उठी बाबा। 106.2 The Beat of Bollywood.

0: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: It is 7:53 on the clock and I've got my friend Nikhil with me on the phone line. Nikhil, good morning. What's up?
2: Good morning, sir.
1: क्या रहा है वीकेंड यार, इतने उदास मत साउंड करो। यू साउंडिंग लाइक अर्जेंटीना फुटबॉल फैन। उस सपोर्ट कर रहे थे क्या?
2: नहीं मैं फुटबॉल फैन तो नहीं हूँ, क्रिकेट फैन हूँ, पर फुटबॉल में इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा था।
1: लेकिन यार ये जो ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ था यार, क्या परफॉर्मेंस था। 6-4 आई थिंक कभी भी हिस्ट्री में इतना जबरदस्त ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ नहीं हुआ यार। सो इफ यू आर इंग्लैंड फैन यू विल बी सेलिब्रेटिंग बिकॉज इंग्लैंड को अच्छे कुछ $2 million ज्यादा मिल गए फ्रांस से। आई मीन सम कंसोलेशन प्राइज है। इंग्लैंड का बेस्ट परफॉर्मेंस है बाय द वे सिंस द लास्ट टाइम दे काइंड ऑफ वन दैट वर्ल्ड कप। सो फुटबॉल फैन यू डोंट हैव टू बी ना। फीफा वर्ल्ड कप जब भी आता है हर कोई कन्वर्ट हो जाता है फैन। आप कैसा फील कर रहे हो इस वक्त?
2: अच्छा कर रहा हूं।
1: वीकेंड कैसा रहा आपका?
2: क्या
1: वीकेंड कैसा रहा आपका?
2: वीकेंड सही रहा, ठीक रहा, अच्छा था।
1: हाँ लग रहा है कुछ गड़बड़ कर रही है वीकेंड पे आपने। लग रहा है कि मिसेज नाराज हो गई, ऐसा साउंड कर रहे हो। मैं आई एम गेटिंग दैट फील।
2: मेरा गला थोड़ा सा ये हो गया।
1: अच्छा ये हो गया, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने एक सवाल पूछा था आपसे एंड यू हैड टू बी अ क्रिकेट फैन टू आंसर दैट क्वेश्चन। कल की जो ट्रॉफी वाली सेरेमनी थी, डोनाल्ड ट्रंप रिफ्यूज टू गेट ऑफ द स्टेज एंड दैट्स व्हाट्स मेकिंग हेडलाइंस दिस मॉर्निंग। बट एक क्रिकेट टूर्नामेंट में रिकी पॉन्टिंग ने कौन सी इंडियन पॉलिटिशियन को थोड़ा धक्का मार दिया था कि भाई उतरो अभी बहुत हो गया?
2: शरद पवार।
1: बिल्कुल सही जवाब है। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने वर्ल्ड कप कह दिया था, बट आई थिंक इट्स व्हाट द चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ चैंपियंस ट्रॉफी में शरद पवार। बट बनता ही है ना, मतलब पॉलिटिशियन बोल रहे होंगे कि इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं मैच, तो थोड़ा एक दो फोटो पीटो तो बनता है ना यार।
2: उस इंसिडेंट के बाद, अच्छा उस इंसिडेंट के बाद डेनियल मार्टिन का करियर थोड़ा सा।
1: किसका करियर?
2: डेनियल मार्टिन। हाँ। रिकी पॉन्टिंग ने उसको पुश किया था, डेनियल मार्टिन ने किया था।
1: वाओ डेमियन मार्टिन यार, मतलब डेमियन मार्टिन ने नहीं किया तो रिकी पॉन्टिंग ने किया था यार, कुछ भी बोल रहे हो।
2: नहीं रिकी पॉन्टिंग ने ट्रॉफी
1: निखिल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन अर्ली इन द मॉर्निंग यार। एंड या इट वॉज शरद पवार द आंसर दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। इफ देयर इज अ सॉन्ग दैट यू लुकिंग फॉर अर्ली इन द मॉर्निंग, यार दिस इज दैट ठिकाना। It's called The Big Breakfast. The early morning requests are, send me a WhatsApp 054-309-1062 per. This is Big 106.2. Good morning.
3: وانت يا دار مديرك بعيده ما نبكي عليك لازم لم يمون العدب وزي

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 8:09।
1: बॉलीवुड।

0: गाने को सुनते हुए जस्ट रियलाइज किया वेलकम का टाइटल ट्रैक साउंड्स एग्जैक्टली लाइक ढंटाना करके रिलीज हो गई क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म. यार मतलब इट्स बिन ऑलमोस्ट 3 to 4 days एंड अभी तक गोविंदा का कोई बयान नहीं आया.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है यार. गोविंदा शुड हैव कम आउट एंड सेड थिंग्स लाइक अरे वो तो पहले मेरे को ओडीसीएस का रोल मुझे ऑफर किया गया था. 3-4 दिन में शूटिंग भी कर ली थी. उसके बाद बिकॉज ऑफ सम क्रिएटिव डिफरेंसेस आई हैड टू बैक आउट ऑफ द प्रोजेक्ट. इनफैक्ट क्रिस्टोफर नोलन ने तो हाँ भी कर दी थी कि टू रीनेम द प्रोजेक्ट ओडिसी नंबर 1. ऐसा कुछ बयान आए तब जाके लगे ना कि देयर इज अ क्रिस्टोफर नोलन फिल्म इन द मार्केट. बट या यू हैव टू गो एंड सी द लिस्टिंग्स टू एक्चुअली रियलाइज कि अ नोलन फिल्म इज आउट. द ओडिसी इज आउट. एंड अगर आपने मेरी तरह गलती की डिड नॉट डू एडवांस बुकिंग या तो आगे से पहले या दूसरी रो पे ही आपको टिकट्स मिलने वाली हैं. बट या आई मीन आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम कि किसी हॉलीवुड डायरेक्टर के लिए इतना पागलपन था इन अ देसी क्राउड. आई मीन आई डोंट थिंक कि इवन स्पीलबर्ग के टाइम पे ऐसा रहा होगा कि यार आई मीन वी फॉलोइंग अ डायरेक्टर एंड हिज वर्क्स सो मच. एक्टर तो मैं मानता हूँ चलो यू नो कुड बीन स्टलोन और स्वार्ट्जनेगर की फिल्म आ रही है बाहर और यू नो लियो डिकैप्रियो. बट इतना क्रेज कि यार नोलन की फिल्म आ रही है तो 1-2-3 हफ्ते तक कोई टिकट्स ही अवेलेबल नहीं. सो या दैट्स वॉट इट इज़ अबाउट. दैट्स वॉट द ओडिसी इज ऑल अबाउट. दैट्स वॉट क्रिस्टोफर नोलन फिल्म जब भी बनाते हैं दिल से बनाते हैं. लीव्स नो स्टोन अनटर्न्ड. Yeah, and yeah, if you've seen that movie, and if you are not in the mood for giving me any spoilers, give me a call. Let me know 800-1062 par kaisi lagi aapko ye movie. The Odyssey is out. And speaking about the movie, speaking about all things entertainment, aapko pata hai na, every weekend, Saturday, sham 7 se 9, and then Sunday, 10 a.m. to 12 p.m., don't forget to tune into The Big Binge, jisme हर वीकेंड मैं एक ओटीटी शो या फिल्म का रिव्यू करता हूँ. क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा एंड फाइनली द वर्डिक्ट कि शुड यू स्ट्रीम इट और स्किप इट. एंड दिस वीकेंड इट वाज अबाउट अक्षय खन्ना एंड सनी देओल्स इक्का. सो इफ यू हैवंट सीन इट एक हल्का सा प्रीव्यू नेक्स्ट टाइम आई एम गोना बी प्लेइंग आउट फॉर यू राइट हियर ऑन द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलराज कहाँ है अलराज?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलराज।
2: नमस्ते।
3: ओला।
2: अस्सलाम वालेकुम।
4: बोंजूर।
5: नी हाओ।
4: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
6: InsuranceMarket.ae. We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
7: Ready, throw!
8: Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.
9: The Big Breakfast brought to you by Zulekha Hospital. Your health matters. The Big Mix. Miss kiya gaya?
10: Inkar hi nahi sakte. चाहो भी तो नहीं कर सकते।
11: हाय निखिल, हाउ यू?
12: हाय हाय हाय जोरा।
11: इतनी बार हाय बोल दिया। हाय हाय हेलो हाय।
12: तो पहली बार बात कर रहा हूँ ना, किससे बात होती रहती
11: है? अरे मुझसे पहली बार बात कर रहा हूँ मैं, क्या इंटिमिडेटिंग लग रही हूँ आपको? नहीं ना।
12: नहीं,
11: इतनी स्वीट सी तो आवाज है मेरी। ऐसे जब मैं इंसान आगे से बोल रहा होता है तो मतलब दैट्स अ क्यू फॉर यू टू कॉम्प्लीमेंट। आप कर ही नहीं रहे हो मतलब।
12: तो वैसे आपके लिए कॉम्प्लीमेंट और है मैम।
11: ओहो प्लीज गो अहेड।
12: वो मस्तला गाना है ना जो अभी नया रिलीज हुआ है।
11: हाँ जी।
12: उसका वो सिंगर का वॉइस और आपका वॉइस 101% मैच।
11: व्हाट आर यू सेइंग?
12: हाँ मैम, सीरियसली मैंने कितने बार सोचा कि फोन करूं पर टाइम नहीं मिला। अभी आज मैं बोल ही दूं आपको।
11: अरे व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट यार निखिल। अच्छा कैन यू कंप्लीट दिस सॉन्ग फॉर मी?
12: कौन सा वाला?
11: ये सुनो। आज की रात मजा हो उसने कहा।
12: आज की रात मजा ले।
11: ये नहीं करना चाहिए था मुझे, आंसर देने के बाद चुपचाप फोन रख देना चाहिए था।
9: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
13: It's 8:32 on the clock and let's take a look sabse pehle at 611 jahan par subah unusual traffic tha. Now it is all clear. So no unusual patches of traffic on 611. Halka bulka 3-4 minute ka traffic aapko milne wala heading south going towards Al Aviv, Al Khawanij area mein. Then there's 311 heading south going towards Dubai from Sharjah. The usual as you get out of city center Zaya, you'll find 4 se 5 minute ki there. You'll spend 5 to 6 minutes extra E11 par Al Nader interchange 1. Beirut Street D62 is getting a bit busy and traffic E44 Al Khail Road par bhi badhta ja raha hai going towards Business Bay from D3.
9: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
14: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस
15: ए मामो
14: सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
15: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
9: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: होता है यार, कंप्लीटली जस्टिफाइड. जब कोई बड़ा इवेंट खत्म हो जाता है तो उसका हैंगओवर, लाइक भाई जान सेड, होता ही है. फीफा वर्ल्ड कप का तो है ही, लेकिन BSS का हैंगओवर भी है ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: लॉट्स ऑफ पीपल स्टिल व्हाट्सएपिंग BSS, स्पेस देयर नेम टू 0543091062. मतलब एक महीने चला ये कॉन्टेस्ट, बट इट इज नाउ ऑल गुड थिंग्स जैसे कि होते हैं, इट हैज कम टू एन एंड. इफ यू गॉट योर नेम इनटू द ड्रॉ, देन बहुत जल्द वो ड्रॉ भी होने वाला है, एंड वन ऑफ यू इज गोना हेड आउट फॉर दैट फैमिली स्टेकेशन विद रिक्सॉस अलमाइरेड इन रसल खेमा. हाउ एक्साइटेड आर यू? वी आर सो excited for you. This is the big breakfast with me, Sid. Kya chal raha hai right now? It is the big Bollywood quiz. Yeah, ek Bollywood superstar to nahi keh sakte, unfortunately, but he is one of the greatest actors ever in Bollywood. Unka aaj birthday hai. Last time maine aapko ek dialogue sunaya tha. Ab main aapko sunata hu ek gana ek aisi film se jo unhone khud kaha ke he regrets doing. Nahi, ye uska remake version hai gaane ka. लेकिन ओरिजिनल गाना जिस फिल्म में था, ही रिग्रेट्स डूइंग द फिल्म, ऑल्दो इट ब्रॉट हिम द मोस्ट कमर्शियल अक्लेम, एंड ही वाज द गाय बिहाइंड दिस ऐतिहासिक डायलॉग.
2: फटा पोस्टर निकला हीरो,
3: ये कौन है?
2: असली हीरो हीरालाल.
0: किसकी बात कर रहा हूं, कौन से बॉलीवुड एक्टर का आज बर्थडे है? 20th of July. इफ यू नो द करेक्ट आंसर, सेंड मी अ व्हाट्सएप विद योर नेम 0543091062. दैट इज द नंबर 0543091062. जवाब सही हुआ तो आप बनेंगे आज के हीरो हीरालाल, जीतेंगे दो ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे। बिग टाइम
1: चेक मॉर्निंग 9:07
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है। बोली में थोड़ा रेयान भी टच है। जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: Asta Gill with Buzz right here on Big 106.2.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: We are playing the Big Bollywood Quiz. I've got Shipra with me on the phone line. Good morning, Shipra. How are you doing?
2: Hi, good morning, Zed. How are you?
0: Very, very good, yaar. Kaisa raha weekend?
2: बहुत अच्छा था,
0: मतलब अच्छा नहीं था, बहुत ऐसा तो क्या किया दैट इट क्वालिफाइज एज बहुत अच्छा वीकेंड?
2: ऑफिस पे ही था, घर पे थे, बाहर गए थे, बस खाया पिया.
0: अच्छा, ये कह रहे हो कि अगर एज लॉन्ग एज ऑफिस में नहीं है इट क्वालिफाइज एज बहुत अच्छा वीकेंड, ऐसा?
2: या यू कैन से.
0: क्या बात है भाई, क्या. मैंने शिप्रा से ऑलरेडी पूछ लिया कि वो क्या काम करती है, एंड शिप्रा का डेजिग्नेशन इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब इतने टाइम हो गया मेरे को रेडियो करते हुए और लोगों से पूछते हुए क्या करते हो. इट नेवर स्टॉप्स अमेजिंग मी यार. यू आर व्हाट मैनेजर आर यू?
2: आई एम अ स्पेसिफिकेशन मैनेजर.
0: सो इफ यू आर अ बिट टू ब्रॉड इन लाइफ, इफ यू नीड टू गेट मोर स्पेसिफिक, राइट, देन शिप्रा विल हेल्प यू आउट कि यार दिस इज व्हाट यू शुड स्पेसिफिकली बी डूइंग इन लाइफ. इज दैट व्हाट इट इज? व्हाट इज अ स्पेसिफिकेशन मैनेजर?
2: No, not at all. So basically, when a building is being constructed, so there are lists of products that will be used in the building.
0: Ah.
2: So I try to specify it with the consultant and architects.
0: Ah, okay. जो specifications, जो guidelines follow आपको करनी थी, ये आपने करी कि नहीं करी, ये basically?
2: Yeah. Like जो मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो मैं स्पेसिफाई कराऊंगी, सो दैट व्हेन वेंडर इज आउट आवर कंपनी नेम विल बी देयर इन द टेंडर डॉक्यूमेंट.
0: Very specific. Oh my God, yeah, it doesn't get. तो क्या पढ़ाई करते हैं इस काम को करने के लिए?
2: By the way, मैं तो computer science engineer हूँ.
0: बहुत ही बढ़िया. Right up over the gate. सीधा चक्कर मारकर स्टेडियम के बाहर. बहुत ही बढ़िया. Isn't it amazing कि जो engineer जो होता है कितना broad होते हैं ना, हम लोग कितने broad होते हैं. मैं देखो, मैं radio कर रहा हूँ, आप specification manager हो, कुछ भी कर सकते हो यार. It's almost like a foundation course. जैसे लोग science wise लेते हैं वैसे हम लोग engineering करते हैं.
2: Correct.
0: तो चलो काम की बात करते हैं शिप्रा, बिकॉज यू हैड अ वंडरफुल वीकेंड. आई एम गोना मेक इट इवन मोर बेटर द वीक ऑल्सो. लास्ट टाइम एक मैंने आपको दो तीन डायलॉग सुनाए थे, गाना भी सुनाया था. एक बॉलीवुड पर्सनालिटी का आज बर्थडे, कंसिडर टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. किसकी बात कर रहा हूँ मैं, किसका बर्थडे आज?
2: नसीरुद्दीन शाह.
0: एब्सोल्युटली करेक्ट, नसीरुद्दीन शाह इज द करेक्ट आंसर. And you want to open movie tickets. Specifically, you can specify any movie and go and watch. जो भी आपका मन करे जाकर देखिए. All right. आपका फेवरेट कौन सा है नसीरुद्दीन शाह की परफॉर्मेंस अगर मैं पूछूं जाते जाते तो?
2: I'm blank. I cannot answer.
0: You don't like him very much, huh? Okay, I'll tell him when you. It's okay, no problem.
2: No, not like that. I just cannot recall. Like I have a very bad memory.
0: No problem at all, man. No problem at all. Jaiye and educate yourself a bit at the movies. Go and watch a Bollywood movie and enjoy yourself. Yeah. Thank you so much for taking part in our contest.
2: Okay, thank you.
0: Take care. That is Shipra, हमारी आज की विनर है. And don't forget, रोज सुबह you have a chance to win these two open movie tickets in the big Bollywood quiz. कुछ देर में coming up, गहरा हुआ from धुरंधर. This is the big breakfast with me, Sid. Good morning.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें। सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल, जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
2: नमस्ते।
3: ओला।
2: अस्सलामुअलैकुम।
4: बोंजूर।
5: नी हाओ।
6: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
0: The Big Mix with Zora. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
9: Morning, Namaskar. 16 minute on this Monday morning. It is 37 degrees Celsius right now. Humidity at 45%. Winds blowing at 11 kilometers per hour. Highs of 39, lows of 34 degrees Celsius.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलरस से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलरस कहाँ है अलरस?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलरस है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलरस।
2: नमस्ते।
3: ओला।
2: अस्सलाम वालेकुम।
4: बोंजूर।
5: नी हाओ।
4: डिड यू नो? नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
6: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
7: 11 heading south going towards Dubai from Sharjah. You'll find 5 to 6 minutes extra at both these arteries, and there's S116, S112 in both directions, east and west. You'll find just a bit of congestion, and 3 se 4 minute ki there heading south going towards Al Abir from Nasma Central Park on 611.
6: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से।
1: It's 9:48 on the clock and क्यों होते हम लोग देसी क्रिकेट फैंस ऐसे यार? कल देयर वाज ऑफ कोर्स द थर्ड एंड फाइनल ODI India versus England. We lost the series, लेकिन फिर भी इतना दुख नहीं हो रहा है।
2: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Of course, it was not a whitewash. तो सबसे पहली खुशी तो ये है that we won the first ODI. उसके बाद बाकी दो हम लोग हार गए. लेकिन कल major reason for not so much of disappointment was the fact that Rohit Sharma announced his non-retirement by 138 runs. Yeah, massive innings. I think Rohit Sharma is That, मतलब इट्स नेवर इनफ राइट. मतलब वो 200 नहीं स्कोर करी तब तक तसल्ली नहीं मिलती. बट इस बात की तसल्ली जरूर थी दैट रोहित शर्मा काइंड ऑफ आंसर्ड हिज क्रिटिक्स एंड सेड अ गुड शट अप टू एवरीबडी हु वाज

आई थिंक रोहित शर्मा इज दैट, मतलब इट्स नेवर इनफ राइट, मतलब वो 200 नहीं स्कोर करे तब तक तसल्ली नहीं मिलती, बट इस बात की तसल्ली जरूर थी दैट रोहित शर्मा काइंड ऑफ आंसर्ड इज क्रिटिक्स एंड सेड अ गुड शट अप टू एवरीबडी वाज सेइंग कि यार नहीं रोहित शर्मा इज गोइंग टू बी रिटायरिंग. उनको कह दिया गया है दैट ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओडीआई स्क्वाड दैट इंडिया इज गोइंग टू टेक इन नेक्स्ट ईयर ओडीआई वर्ल्ड कप. उन्होंने कहा भाई ए शांति रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इट माइट बी द लास्ट टाइम दैट यू नो पीपल इन इंग्लैंड एक्चुअली सॉ रोहित शर्मा विराट कोहली. विल दे बी बैक टू इंग्लैंड शोज नॉट very sure, and even the commentators yesterday gave them a nice little send off. Now the question last time was ki who was the person who scored a century at Lords and now is a selector of the Indian cricket team, and the correct answer is Ajit Agarkar. Lots of people got it right and sent me a message. Kitne Indian cricketers have scored a test century at Lords? There are quite a few. Vinu Mankad, Gundappa Vishwanath, Dilip Vengsarkar scored three. Ravi Shastri has also done it in 1990. Saurav Ganguly 96 mein. Then, like I said, Ajit Agarkar 2002. Rahul Dravid 2011. Rane in 2014. KL Rahul was the latest one 2021 and then 25 as well. But Rohit Sharma became the first person to score an ODI century at Lords. Yep, Roko not going anywhere. Inko rokna mushkil hai, namumkin hai. Jasprit Bumrah was not playing yesterday, and because he wasn't playing, see what happened. Yeah, I mean, first innings, England scored 387. Kaun banata yaar? For the loss of 3 wickets, India fell 27 runs short. Despite that magnificent century, Rohit Sharma lost the third ODI.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 10:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Yo, yo, yo, yo, got a nojla.

0: The true test of how active you are on social media was yesterday, क्योंकि पूरा एक घंटा 26 मिनट तक there was Meta का downtime.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: I am not even joking. It qualifies as a major downtime across platforms, Facebook, Messenger, Instagram. 19th of July afternoon, approximately 1 hour and 26 minutes के लिए downtime. अब मैं क्या करूंगा वाली फीलिंग अगर आपको हुई थी तो प्लीज गिव मी अ कॉल, लेट मी नो, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू यार. डिड यू एक्चुअली नोटिस एक घंटा 26 मिनट का डाउन टाइम? दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल यार. दूसरी बात, अगर आपने ओडिसी देखी है सिनेमा हॉल में जाकर तो मुझे प्लीज कॉल करो, बताओ आपका रिव्यू क्या है. पीपल कांट स्टॉप रेविंग अबाउट दैट फिल्म, जिसके टिकट मिलना मुश्किल राइट हियर इन द यूएई.
1: बिग 106.2.

0: 92.2 The Beat of Bollywood. The Big Mix with Zora. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
3: As soon as you search on Google weather update, it'll give you an excessive heat written in red letters, but don't be surprised. Partly sunny start to this Monday morning, 38 degrees Celsius, humidity at 41%, winds blowing at 11 kilometers per hour, highs of 39 right now, lows of 34 degrees Celsius.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
4: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही.
5: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरा, बट प्लान होगा आपका. फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे 3 to 6 PM. क्योंकि अगर जोरा ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया.
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Zora. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour. Brought to you by insurancemarket.ae.

0: आई हाय, हम दुआ करते हैं कि आप और गाएं, आप और अच्छा गाती हैं। मैंने भी एक बार अपना बर्थडे कैरियोके बर्थडे पार्टी की थी एंड मेरी एक फ्रेंड ने माइक ही नहीं छोड़ा, हमें वो जगह छोड़नी पड़ी बिकॉज यू नो द गाय हैड टू कम इनसाइड दैट बूथ। आई एम नॉट इवन किडिंग एंड से प्लीज प्लीज लीव, आई डोंट वांट टू लूज बिजनेस बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड सिंगिंग।
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
2: Morning, 10:24 right here on this Monday. Kisi vele, let's take a look at the road. Sabse pehle in Abu Dhabi chalte hain, capital. There was a bit of congestion. Abhi bhi thoda bahut hi traffic hai. Mafraq Industrial heading north going towards Banias on E11. Other than that, everything seems to be quite smooth flowing. Jo pehle 30/22 traffic tha, wo sab kuch ab sort hota hua nazar aa raha hai. Then there is Dubai Sharjah. Chalte hain Jafza 1 ki aur. And very unusual traffic aaj subah se D55 par. And this is heading west. In case you have more info about this, definitely give me a call 800-1062 par. Iske alawa usual hotspots aapko milengi 311-11 heading south going towards Dubai from Sharjah. 5 to 6 minutes extra max you'd spend both these arteries per. Then Sharjah Industrial per S112, S116 as well. And then 611 Emirates Road per heading south going towards Al Awi. You'll find 3 se 4 minute ki der.
1: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
3: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा,
2: आ रहा है देखिए।
0: ये गुस्सा नहीं है।
3: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड, बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग बाय ई एंड।

0: Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Mix with Zora. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, miss kiya gaya?
1: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते.
2: हाय निखिल, हाउ यू?
3: हाय हाय हाय जोरा,
2: इतनी बार हाय बोल दिया. हाय हाय हेलो हाय.
3: तो पहली बार बात कर रहा हूँ ना, किससे बात होती रही.
2: अरे मुझसे पहली बार बात कर रहे हो, मैं क्या इंटिमिडेटिंग लग रही हूँ आपको? नहीं ना.
3: नहीं नहीं नहीं,
2: इतनी स्वीट सी तो आवाज है मेरी. ऐसे जब मैं इंसान आगे से बोल रहा होता है तो मतलब दैट्स अ क्यू फॉर यू टू कॉम्प्लीमेंट. आप कर ही नहीं रहे हो मतलब.
3: तो वैसे आपके लिए कॉम्प्लीमेंट और है मैम.
2: ओहो प्लीज गो अहेड.
3: वो मस्तला गाना है ना जो अभी नया रिलीज हुआ है.
2: हाँ जी.
3: उसका वो सिंगर का वॉइस और आपका वॉइस 101% मैच.
2: व्हाट आर यू सेइंग?
3: हाँ मैम, सीरियसली मैंने कितने बार सोचा कि फोन करूं पर टाइम नहीं मिला. अभी मैं सोचा कि आज मैं बोल ही दूं आपको.
2: अरे व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट यार निखिल. अच्छा कैन यू कंप्लीट दिस सॉन्ग फॉर मी?
3: कौन सा वाला?
2: ये सुनो. आज की रात मजा हो उसने कहा.
3: आज की रात मजा ले.
2: ये नहीं करना चाहिए था मुझे. आंसर देने के बाद चुपचाप फोन रख देना चाहिए था.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जादेरा, रसलखोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लड़ेगा?
3: यही 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पाँच? पाँच।
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: बस मेरे लिए।
1: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। दिल आखिर तू क्यों रोता है।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Early in the morning.
2: Come on.
0: The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding. To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song, and your message to 054-309-1062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, Miss Kiya Gya.
3: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
4: हाय निखिल, हाउ यू?
5: हाय हाय हाय बोला।
4: इतनी बार हाय बोल दिया। हाय हाय हेलो हाय।
5: तो पहली बार बात कर रहा हूँ ना, किससे बात होती रही
4: है? अरे मुझसे पहली बार बात कर रही हूँ मैं, क्या इंटिमिडेटिंग लग रही हूँ आपको? नहीं ना।
5: नहीं नहीं नहीं,
4: इतनी स्वीट सी तो आवाज है मेरी। ऐसे जब मैं इंसान आगे से बोल रहा होता है तो मतलब दैट्स अ क्यू फॉर यू टू कॉम्प्लीमेंट, आप कर ही नहीं रहे हो मतलब।
5: तो वैसे आपके लिए कॉम्प्लीमेंट और है मैम।
4: ओहो प्लीज गो अहेड।
5: वो मस्तला गाना है ना जो अभी नया रिलीज हुआ है।
4: हाँ जी।
5: उसका वो सिंगर का वॉइस और आपका वॉइस 101% मैच।
4: व्हाट आर यू सेइंग?
5: हाँ मैम, सीरियसली मैंने कितने बार सोचा कि फोन करूं पर टाइम नहीं मिला। अभी मैंने आज मैं बोल ही दूं आपको।
4: अरे व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट यार निखिल। अच्छा कैन यू कंप्लीट द सॉन्ग फॉर मी?
5: कौन सा वाला?
4: ये सुनो। आज की रात मजा हो उसने कहा,
5: आज की रात मजा ले।
4: ये नहीं करना चाहिए था मुझे, आंसर देने के बाद चुपचाप फोन रख देना चाहिए था।
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: Come on, Riya.
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी है। भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: wow.
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा।
0: नॉट लिसनिंग,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: तुम
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: Okay, that's it.
2: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, that's my song by E-End.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, इट्स 107 ऑन द बिग क्लॉक।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: to The Beat of Bollywood. The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding.
1: Namaste.
2: Hola.
1: Assalamu alaikum.
3: Bonjour.
4: Ni hao.
3: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
0: Big.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
7: 39 डिग्री सेल्सियस बाहर, ह्यूमिडिटी फिलहाल है 44% पे। इवन दो इट इज हॉट एंड ह्यूमिड, इट इज मोस्टली क्लाउडी टुडे। सरप्राइजिंगली उतना ज्यादा सनी नहीं होने वाला है, बट लोज आज जाएंगे सिर्फ 34 तक, विच मीन्स ऑल इन ऑल इज गोइंग टू बी अ मच हॉटर डे टुडे।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2 The Beat of Bollywood The Big Mix brought to you by insurancemarket.ae for the best insurance deals in the UAE. Call 800-ALFRED-247.
2: Where's your next adventure taking you? Live streaming from a safari trip, posting pictures from a trekking adventure, or FaceTiming your family from a remote island. Whatever your adventure looks like, there's a data and calling plan made for you. With Roam Like Home, use your local data and minutes abroad, starting from just 100 dirhams. Roam Like Home with Freedom Plans. To subscribe, visit the E&UAE app or our website. T's and C's apply. E&. Go for more.
1: Listen to her every day.
3: Mugambo! खुश हुआ।
4: अरे मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, वो कहता है कि 59% लोग जो है देर रात तक जब जागते हैं, यू नो व्हेन यू आर इन योर बेड आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, यू एंड अप बाइंग रैंडम थिंग्स। तो आप करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग?
5: वो तो कभी भी कर लेते हैं, रात का जरूरी थोड़ी है।
4: अरे कभी भी कर लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आधी रात को जब आप बोर हो रहे हो तभी करें, आप दिन में भी ये कर लेते हैं।
5: बस जब भी अपने यहाँ खोलते हैं कुछ ऑर्डर ही कर लेते हैं।
4: सबसे फालतू चीज क्या मंगाई आज तक आपने रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग से?
5: याद नहीं है, बहुत सारी फालतू चीजें मंगवाई है। एक तो नहीं है स्क्रीन मैग्नीफायर, पता नहीं क्या मंगवा लिया।
4: स्क्रीन मैग्नीफायर आपको पता है ना, वो अजीब चीजें फ्री में नहीं आती हैं, हमें पता ही नहीं चलता है हम कितनी सारी शॉपिंग कर लेते हैं, थिंग्स दैट वी डोंट नीड। आई थिंक दैट इज व्हाट ऑनलाइन शॉपिंग इज। दो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, बट आई एम ऑल्सो अडिक्टेड, तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: मल्टीपल कार एक्सीडेंट्स रिपोर्टेड यार। अगर आप D68 पर है अलखेल स्ट्रीट, तो वहाँ पे हेडिंग टूवर्ड्स दिस इज गोइंग टूवर्ड्स अलसायल लतीफा हॉस्पिटल की तरफ अगर आप जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा इस कार एक्सीडेंट की वजह से 8 से 10 मिनट का डिले। एक और कार एक्सीडेंट रिपोर्टेड E44, अगेन दिस इज हेडिंग टूवर्ड्स अलखेल ओनली, बट दिस इज अराउंड अलकूज फोर्थ। उस कार एक्सीडेंट की वजह से आपको 12 मिनट का डिले मिलेगा। उसके अलावा अगर आप है E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड हेडिंग टूवर्ड्स शारजा, तो वहाँ पे आपको मिल सकता है लाइट से मॉडरेट ट्रैफिक। दिस इज स्टार्टिंग अलवर का टू going towards S102 Sharjah Ring Road. Any other traffic update, aap hame message karke bata sakte hain on our WhatsApp, which is 054-309-1062.
1: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
0: Tum apne aap ko bahut pasand karti ho na?
7: Bahut. Main apni favorite hu.
1: Ye hai Zohra on the Big Mix. On Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: I love this song यार, माहिया सुजैन डिमेलो की आवाज़. ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट जब भी जो भी गाने बन रहे थे अगर उसमें इंग्लिश में भी कुछ हो रहा था ना, वेदर और नॉट वी न्यू द लिरिक्स वी वर सिंगिंग अलॉन्ग टू एवरी थिंग. एंड फिलहाल जैसे इस गाने में कहा है, समवेयर आउट देयर आई नो देयर इज अ समवन हु इज वेटिंग जस्ट फॉर मी माहिया, ऐसा ही कहा था इनकी वाइफ ने भी जब इनको ये मिले थे एज हर हस्बैंड. आज ऑन द बिग बॉलीवुड अंडर कवर किस एक्टर की बात कर रही हूँ?
2: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: चार क्लूज मैंने आपको दिए थे. क्लूज सुन के बताना था किस एक्टर की बात हो रही है. मेड हिज डेब्यू विद अ स्मॉल रोल इन लव शफ्ते चिकन खुराना. रिसेंटली स्टन द वर्ल्ड विद हिज वायरल डांस मूव उफ तौबा तौबा. मैरिड टू हिज क्रश हु रिसेंटली सेलिब्रेटेड हर फर्स्ट बर्थडे एज अ मॉम. एंड अगर संजू देखी है यू नो कि आइडियल बेस्ट फ्रेंड यही बने थे किसी भी पिक्चर में अगर कंपेयर किया जाए तो. किसकी बात हो रही है मुझे बताएंगी अनुक्षा. हाय.
3: हाय,
1: हाउ आर यू?
3: वेरी गुड वेरी गुड. नाइस टॉकिंग टू यू टू.
1: पहले तो मुझे बताओ अनुक्षा कि हाउ मेनी टाइम्स हैव पीपल मेस्ड अप योर नेम एंड कॉल्ड यू अनुष्का?
3: जिलियन टाइम्स.
1: बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम स्पीकिंग टू एनीवन बाय दिस नेम अनुक्षा. मुझे जेन्युइनली लगा कि आपने अपना ही नाम गलत बता दिया है मुझे. बिकॉज अनुक्षा इज अ वेरी यूनिक नेम. व्हाट डज इट मीन?
3: It means perfect. Nooks in Hindi is false.
1: What an irony. Perfect naam ko imperfect tarike se 50,000 baar logon ne bula hoga. Anushka, Anushka karke.
3: I know. Tell me about it.
1: It's meant to be perfect. My God. Anuksha, but it was so, so nice talking to you. You have a beautiful
3: Likewise.
1: Name.
3: Likewise.
1: Mujhe abhi batao ki filhaal ye jo char clues maine diye the, kis actor ki baat ho rahi hai?
3: The one and only Vicky Kaushal.
1: Absolutely. Vicky Kaushal pasand hai aapko?
3: Love him.
1: किसको नहीं पसंद है यार. मतलब
3: he's so charming.
1: So good. So charming है ना.
3: I love the way he respects women and the way he's with his wife.
1: Yeah, even when he's not with his wife, like if you see any of his interviews, उनके podcast वगैरह पे, he talks so highly of Katrina. Unlike some other actors, you know, who tell their wives, lipstick नहीं लगाओ, ये मत करो, मत करो.
3: Yeah, he's a green forest. He's a green forest.
1: Absolute green forest. Are you married to a Vicky Kaushal in real life?
3: Yes,
1: oh
3: very
1: my
3: much.
1: God, आपके विकी कौशल का नाम क्या है?
3: संदीप.
1: अरे सो नाइस. अनुक्षा एंड संदीप की जोड़ी. आई होप आपकी भी विकी और कटरीना की तरह जोड़ी बनी रहे. एक मुझे एक बात बताओ, दिस इज अ क्वेश्चन आई ऑलवेज यू नो थिंक ऑफ. अगर आप यू नो अपनी शादी पे किसी एक सेलिब्रिटी को बुला पाते, समवन हु यू रियली रियली अडोर एंड आर अ बिग फैन ऑफ, तो आप किस सेलिब्रिटी को बुलाते?
3: अमिताभ बच्चन.
1: व्हाट व्हाट Why? What?
3: I just feel that man is par excellence. I just love his acting. He's so fine. He can take on any role.
1: But shaadi pe aage kya hi role nibayenge?
3: Nahi, bas aa jaye. Mujhe koi role nahi nibhana unse. Bas aa jaye.
1: Aashirwad de jaye bas.
3: Chalega, wo bhi chalega.
1: Chalo yaar, great talking to you Anuksha. You've given me the right
3: Likewise.
1: Answer. And I hope you have a beautiful, beautiful Monday.
3: Likewise, wish you the same. Have a great day.
1: Thank you, Anuksha. Bye.
3: Bye.
1: इतनी प्यारी आवाज, इतनी प्यारी लड़की. I'm pretty sure कि इनके नाम का मतलब ऐसे करते ही होंगे कबाड़ा लोग, अनुष्का अनुष्का कहके. But Anuksha, it means perfect. It means कोई नुक्स नहीं है. And I think that is what we want to be. So on that note, on that very very positive and optimistic note, let's make sure कि हमारा मंडे भी उसी positivity के साथ गुजरे. Moving on to the next song from Dhurandhar the Revenge. Ari Ari coming your way. Shashwat Sachdev ka music. Bombay Rockers ka original gana. I think he's done a fab job revamping the song.

0: मिला नहीं, मिला नहीं। और जमीन भाई पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लो स्लो स्लो। आई गॉट
1: बिग 106.2 Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। फिर आफ्टरनून 2:05 हो चुके हैं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: हाँ जी, गुड आफ्टरनून. 2:15 हो चुके हैं जोरा के साथ. दिस इज द बिग मिक्स अंटिल 5 PM. फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऑन द बिग बॉलीवुड टी, है ना. आज क्या ऐसा नया नया मुझे मिला है दैट आई रियली फील लाइक आई हैव टू टॉक अबाउट इज द बज अराउंड दिस मूवी. नाउ इफ यू आर अ फैन ऑफ हॉरर मूवीज, यू नो, हॉरर थ्रिलर्स या माइथोलॉजिकल, यू नो, हॉरर मूवीज, देन आपको पता ही है कि हमारे बॉलीवुड में एक ही एक्चुअली ऐसी प्रॉपर मूवी बनी है जिसे देख के थोड़ा बहुत भी हमें लगा हो कि यार पोटेंशियल है इस मूवी में, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है. दैट इज़ तुम्बाड़, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करूँ. ये जो मूवी आई थी, सोहम शाख ने ये इस मूवी में काम किया था एंड इट डिड रियली रियली वेल. आई थिंक इट फ्लू अंडर द रेडार बैक देन बिकॉज आई फील इट वॉज अ लिटल अहेड ऑफ इट्स टाइम. लेकिन उसके बाद इसका हाइप बहुत हुआ एंड रिसेंटली इट वॉज री रिलीज इन सिनेमाज, जिसके बाद बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया इस मूवी का, है ना. एंड पीपल रियली अप्रिशिएटेड द मूवी उसके बाद. सो नाउ द बज इज दैट इसका सीक्वल बन रहा है. तुम्बाड़ 2 इज इन द मेकिंग राइट नाउ एंड एवरीवन इज एक्साइटेड. बट अभी अनाउंस हुआ, इनफैक्ट द एक्ट्रेस हरसेल्फ अनाउंस्ड इट ऑफिशियली ऑन हर इंस्टाग्राम विद अ वेरी कूल लुकिंग पोस्टर व्हिच इज बेसिकली आलिया भट्ट. आलिया भट्ट ने ज्वाइन किया है स्टारकास्ट ऑफ दिस वेरी वेरी हाईली एंटिसिपेटेड सीक्वल व्हिच इज तुम्बाड़ 2. एंड बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है इनका. व्हाट एग्जैक्टली शी इज गोइंग टू बी प्लेइंग वो पता नहीं, बट शी इज गोइंग टू स्टार अलॉन्ग साइड सोहम शाह एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिस माइथोलॉजिकल थ्रिलर. इसे डायरेक्ट करने वाले हैं आदेश प्रसाद एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग बजट मूवी. ऑब्वियसली आपको पता ही है आलिया भट्ट आई है तो बिग बजट तो होगा ही. द फर्स्ट वन वॉज समवॉट सॉर्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, तो इट वॉज अ लिटिल लोअर बजट मूवी. लेकिन ये जो है इसका बेसिकली ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है. नाउ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स मूवीज ऐसी बनती हैं एंड यू नो द फर्स्ट पार्ट डज वेल सो दे डिसाइड टू मेक अ सीक्वल, बट द प्रॉब्लम हैपेंस व्हेन द कास्टिंग गोज ऑफ. आई रियली थिंक सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम इसी में होता है जब कास्टिंग आपके ऊपर नीचे हो जाती है. दैट्स व्हेन द सीक्वल यू नो हैज़ चांसेस ऑफ नॉट डूइंग वेल, मुझे लगता है. ये मेरा ओपिनियन है. एंड इन दिस मूवी इवन दो आलिया भट्ट इज अ फिनोमिनल एक्ट्रेस, फॉर सम रीजन आई फील शी डज नॉट फिट द आई डोंट नो द होल मूड एंड द होल सेटिंग ऑफ तुम्बाड़. लाइक द होल यू नो सेट जो उसका है, तुम्बाड़ का जो बैकग्राउंड है एंड ऑल दैट, आई फील लाइक उसमें अ लिटल मोर रॉ लुकिंग कैरेक्टर्स फिट बेटर. एंड आलिया भट्ट आई फील इज अ लॉट मोर यू नो पॉलिश्ड एंड प्रिम एंड प्रॉपर, सो आई डोंट नो शील फिट वेल, बट शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस सो आई कॉन्ट वेट टू सी वॉट शील बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द मूवी. वट डू यू हैव टू से अबाउट दिस इफ नॉट आलिया भट्ट? आपको क्या लगता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड सोहम शाह के साथ किस एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहिए था?

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: हाँ जी, a very very good afternoon. 2:30 हो चुके हैं. Zohra के साथ हो आप right here on Big 106.2. This is the beat of Bollywood. फिलहाल Fast Track Song of the Hour आपने सुना. That is brought to you by selfdrive.ae. And अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है that you have been spending too much time scrolling to find the right car rental, then all you've got to do is meet Sia, which is Self-Drive's AI car rental assistant. बस आपको टाइप करना है अपना बजट, अपना कार टाइप या एनी प्रेफरेंस दैट यू हैव एंड सिया विल इंस्टेंटली रेकमेंड द राइट कार फॉर यू. तो उसमें आपकी आधी मेहनत जो है वो सब चली जाएगी वहां पे, बिकॉज सिया इज गोइंग टू डू ऑल यू नो द नेसेसरी थिंग्स दैट यू नीड टू नो व्हाट इज द आइडियल कार रेंटल फॉर यू. सो एंडलेस स्क्रोलिंग जो है वो आपका एंड हो जाएगा एंड यू विल हैव अ क्विक एंड ईजी बुकिंग. ऑल यू गॉट टू डू इज विजिट selfdrive.ae टुडे. इट इज 2:31 ऑन द बिग क्लॉक. अ वेरी गुड आफ्टरनून, यू विद मी ज़ोरा.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उठी बाबा। 106.2 The Beat of Bollywood.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो।
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

फिलहाल ये दीदी आपके साथ शाम 5 बजे तक होने वाली है एंड वी गोना मेक श्योर दैट वी टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट इज एंटरटेनिंग इन्फॉर्मेटिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. इनफैक्ट अभी अभी एक पोस्ट मैंने ऐसा देखा है जिसमें यू नो देयर स्टफ दैट्स रिटन व्हिच इज बेसिकली स्टफ दैट डॉक्टर्स हैव टोल्ड यू. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें डॉक्टर्स ऐसी चीज़ें बोलते हैं हंस हंस के, हमें लगता है हम मजाक कर रहे होंगे बट वो मजाक नहीं कर रहे होते, वो सीरियसली बोल रहे होते. सो आई एम गोना रीड आउट अ लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स दैट सीम लाइक देयर अ जोक बट देर एक्चुअली वेरी सीरियस एंड देर एक्चुअली थिंग्स दैट कुड हेल्प यू रिकवर फ्रॉम वट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग. सो वी विल गेट इन टू दैट इन द नेक्स्ट आवर. लेकिन वी विल कंटिन्यू द ब्यूटिफुल म्यूजिक फॉर यू ऑन द बिग मिक्स. टॉकिंग अबाउट विच बेख्याली इज कमिंग योर वे. सकेत टंडन की आवाज़ राइट हियर ऑन द बिग मिक्स.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 3:05 गुड आफ्टरनून। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Where is your next adventure taking you? Live streaming from a safari trip, posting pictures from a trekking adventure, or FaceTiming your family from a remote island? Whatever your adventure looks like, there's a data and calling plan made for you. With Roam Like Home, use your local data and minutes abroad, starting from just 100 dirhams. Roam Like Home with Freedom Plans. To subscribe, visit the E& UAE app or our website. T's and C's apply. E& Go for more.
4: Listen to her every day.
5: Mugambo! खुश हुआ।
6: अरे मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, वो कहता है कि 59% लोग जो है देर रात तक जब जाते हैं, यू नो व्हेन यू आर इन योर बेड आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, यू एंड अप बाइंग रैंडम थिंग्स। तो आप करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग?
7: वो तो कभी भी कर लेते हैं, रात का जरूरी थोड़ी है।
6: अरे कभी भी कर लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आधी रात को जब आप बोर हो रहे हो तभी करें, आप दिन में भी ये कर लेते हैं।
7: बस जब भी अपने यहाँ फालतू कुछ ऑर्डर कर लेते हैं।
6: सबसे फालतू चीज क्या मंगाई है आज तक आपने रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग से?
7: याद नहीं है, बहुत सारी फालतू चीजें मंगवाई है। एक तो नहीं है, स्क्रीन मैग्नीफायर, पता नहीं क्या मंगवा लिया।
6: स्क्रीन मैग्नीफायर आपको पता है ना, वो अजीब चीजें फ्री में नहीं आती हैं, हमें पता ही नहीं चलता है हम कितनी सारी शॉपिंग कर लेते हैं, थिंग्स दैट वी डोंट नीड। आई थिंक दैट इज व्हाट ऑनलाइन शॉपिंग इज। दो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, बट आई एम ऑल्सो एडिक्टेड, तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
8: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
9: बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
12: 38 degrees Celsius bahar, humidity at 52% currently. It's a hot and humid day, bright and sunny. Aaj highs jayenge 39 tak, lows aaj sham jayenge sirf 34 tak.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Fast Track Song of the Hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Mix with Zohra on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: जी करदा on the Big Mix, हमारा भी बहुत कुछ करने का जी कर रहा है, लेकिन फिलहाल मेरा जी तो सिर्फ एक ही गेम खेलने का कर रहा है, which is name place movie thing, जो मैं खेलने वाली हूँ आपके साथ in the last hour of the show. फिलहाल it's 3:47 on the big clock. We're heading into the last hour of the show. इस आखिरी घंटे में ये गेम हम खेलने वाले हैं. And if you've all your childhood played the game name place animal thing, then you're definitely going to have super super fun playing this game, because ये एक Bollywood version है of the same game and it's very very simple. Honestly, मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है एंड ऑन अ मंडे आपको और क्या ही चाहिए. सी इफ यू आर सपोर्टिंग स्पेन yesterday, तो आपका मूड इन जनरल अच्छा होगा, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे थे स्पेन को सपोर्ट, देन यू आर फीलिंग वेरी वेरी लो आई एम अज्यूमिंग. सो लेट्स जस्ट अपलिफ्ट योर मूड अ लिटिल बिट एंड प्ले द गेम. ऑल यू गॉट टू डू इज कॉल मी 800-1062, दैट्स आवर टोल फ्री नंबर. वी आर गोइंग टू बी प्लेइंग नेम प्लेस मूवी थिंग इन द लास्ट आवर.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक, 4:05 हो चुके हैं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 38 डिग्री सेल्सियस है बाहर, ह्यूमिडिटी बढ़ते हुए 53% पर है, हाई का टेम्परेचर आज एक्सपेक्टेड है टू हिट 39 एंड इट विल ड्रॉप डाउन टू अबाउट 34 लेटर दिस इवनिंग। ऑल इन ऑल हॉट एंड सनी डे टुडे।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big

0: self-drives new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: Good afternoon, it's 4:27 on the big clock and waqt ho chuka hai.
2: Are you ready for this?
0: Name, place, movie, thing.
1: Yeah. Yes, that's right. It's time to play Name, Place, Movie, Thing. With me on the phone line, Chahat. Hi, Chahat. How are you?
3: Hi, I'm good. How are you?
1: Very well, Chahat. I love your name. It is such a beautiful name. In fact, aapka aisa naam hai ki aapko nickname ki bhi zarurat nahi padti hogi. It is just so beautiful.
3: Yeah, Chahat. I keep getting like song recommendations.
1: For nicknames?
3: No, like my name comes in a lot of songs. So people keep telling me, oh, I remember this song when I see you.
1: It's easy to flirt with you, hai na?
3: That's true.
1: Chalo, Chahat, I will not try my luck at that. But we are going to play Name, Place, Movie, Thing. It is a fun game. I have a feeling that you're going to be able to ace this. Theek hai?
3: I hope so too.
1: Chalo, let's quickly explain the rules of the game. Theek hai? Main aapko ek letter dene wali hoon. And with that letter, you have to name a Bollywood celebrity. You have to name a Bollywood movie, ek place or ek thing. 5-5 seconds each ke liye aapko milenge. Okay?
3: Sure.
1: We'll start a little easy. Is this the first time you're playing the game?
3: Yes.
1: Okay, theek hai. We'll start very easy for you. Okay? Sure. Chalo, the letter that I'm giving you is the letter D. D से आपको बताना है बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम. गो.
3: दिशा पटानी.
1: वेरी गुड. डी से प्लेस.
3: देहरादून.
1: डी से थिंग. व्हाट इज दिस? अरे डस्टबिन बोल देते, डोर बोल देते. डी से डी से बताओ मूवी. अरे यू गुड एट दिस. बस थोड़ा थिंग को लेके सोचना है. ठीक है, चलो. नाउ दैट यू वॉर्म्ड अप, वी विल प्ले वन मोर राउंड.
3: डन. इट डजंट हैव टू बी इन द सेम सीक्वेंस.
1: नो, डजंट हैव टू बी इन द सेम सीक्वेंस. इट कुड बी एनी सीक्वेंस. आई कैन ट्रिक यू.
3: ओके, परफेक्ट.
1: चलो, यू आर गेटिंग द लेटर आर. आर से आपको बताना है सेलिब्रिटी का नाम. गो.
3: राजकुमार राव.
1: वेरी गुड. आर से मूवी. राम. ये तो नाम हो
3: गया.
1: ओके, चलो, आई विल गिव इट टू यू. आई विल गिव इट टू यू. आधा नाम बोल दिया राम. तू खुद ही फिल इन द ब्लैंक्स कर ले. ओके, आर से बताओ प्लेस.
3: राजस्थान.
1: अब आर से बताओ थिंग. क्या रैंप?
3: चलो
1: ये हंस हंस के जो आप कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो. यू चलो, यू प्लेड रियली रियली वेल. एटलीस्ट 10/10 फॉर दी अटेम्प्ट. चाहे गलत आंसर क्यों ना दिया हो, बट इट वॉज सुपर सुपर फन टॉकिंग टू यू चाहत. होप यू एंजॉयड.
3: थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू चाहत. बाय
3: बाय.
1: Chahat playing Name, Place, Movie, Thing with us. यही है, मतलब आपको अगर नहीं भी आता हो ना, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे देना है बस. सही हो गलत हो वो मैं डिसाइड करूंगी. All you need to do is play with confidence. This is Name, Place, Movie, Thing. अगर आपको भी खेलना है, all you've got to do is call me 800-106-2 पे.

0: 101.2 The Beat of Bollywood. Wow, your hair color looks stunning.
1: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
0: Yeah, right.
1: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia free and enriched with henna extract and argan oil.
0: Really?
1: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
0: I'm buying it right now.
1: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
2: Missed your morning buzz?
3: उठा ले रे बाबा।
2: ये सुनो।
4: Hi, good morning, Sid. How are you?
5: Very, very good, यार। कैसा रहा वीकेंड?
4: बहुत अच्छा था।
5: क्या ऐसा तो क्या किया that it qualifies as a बहुत अच्छा वीकेंड?
4: ऑफिस पे ही था। घर पे थे। बाहर गए थे बस खाया पिया।
5: अच्छा ये कह रहे हो कि as long as ऑफिस में नहीं है it qualifies as a बहुत अच्छा वीकेंड ऐसा? क्या बात है भाई क्या? मैंने शिप्रा से ऑलरेडी पूछ लिया कि वो क्या काम करती है एंड शिप्रा का डेजिग्नेशन इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग मतलब इट नेवर स्टॉप्स अमेजिंग मी यार यू आर अ व्हाट मैनेजर आर यू
4: I'm a specification manager.
5: So if you're a bit too broad in life, if you need to get more specific, right, then Shipra will help you out. Yeah, this is what you should specifically be doing in life. Is that what it is? Oh, what is a specification manager?
4: No, not at all. So basically, when a building is being constructed, So there are lists of products that will be used in the building.
5: Ah.
4: So I try to specify it with the consultant and architect.
5: Very specific. तो क्या पढ़ाई करते हैं इस काम को करने के लिए?
4: By the way, मैं तो computer science engineer हूँ.
5: बहुत ही बढ़िया. बहुत ही बढ़िया.
2: Energy and action. Monday to Friday, 7 AM to 11 AM. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2, The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: ट्रैफिक थोड़ा सा बढ़ता हुआ अगर आप है E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पे हेडिंग टुवर्ड्स शारजा तो आपको मिल जाएगा मॉडरेट से हैवी ट्रैफिक स्टार्टिंग वर्का 2 S112 मलिहा रोड तक. इनफैक्ट वर्का 1 के पास एक कार एक्सीडेंट हुआ है व्हिच इज कॉजिंग एटलीस्ट अबाउट अ 10 मिनट डिले ऑन दैट रोड. ऑल्सो D62 हेडिंग टुवर्ड्स D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट बंपर टू बंपर ट्रैफिक वहां पे भी 8 से 10 मिनट का डिले. पोर्ट साइड के पास ऑन D85 बनिया स्ट्रीट एक छोटा सा कार एक्सीडेंट 5 से 6 मिनट का वहां पर डिले. और एक और कार एक्सीडेंट हुआ है D77 एग्जिट पे हेडिंग टुवर्ड्स मैदान वहां पे भी 8 मिनट का डिले. एनी अदर ट्रैफिक अपडेट आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं ऑन अ व्हाट्सएप व्हिच इज 0543091062.
2: Sia, self-drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:06।
2: Bollywood.

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
2: अलराज है। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलराज।
3: Sia self-drives new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
4: The Big Chill.
5: All my favorite music in one spot.
4: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
6: Drive home a brand new Jetter. Buy now, pay next year. Zero VAT or zero interest. With EMIs starting from just 966 dirhams per month.
4: Big traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
7: Not really big, but slow moving traffic. If you're on the Sheikh Mohammed bin Zayed Mariv to Mohesna, काफी patchy traffic है. There's traffic which is a bit slow than the usual. अगर आप जा रहे हैं towards Alkuz Industrial Area, there's heavy traffic इस वक्त near Dubai Hills Mall. जद्दाफ के पास भी आपको traffic मिलेगा. इसके अलावा not really bad. फिलहाल 20 minute delay on Sheikh Zayed. Anything else you'd like to report? मुझे बताइए 800-1062 पे.
4: Sia, self-drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
8: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
4: Big 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, now Mansi. While you're stuck in jams, we jam here with the karaoke. Awaaz aapki, concert aapka, audience meri bas koshish itni karni ki audience bani rahe, bhage nahi. Right now I've got Jatin. Hi.
2: Hi, how are you?
1: I'm good. How is your Monday?
2: All good.
1: Very nice.
2: So energetic. Yeah.
1: Energetic? Aisa kya hua? Salary badh gayi Monday ko? कि तो जोक ऑफ द ईयर है ना, जोक ऑफ द ईयर है इस साल ये बोलना कि सैलरी बढ़ गई
2: है.
1: फिलहाल जतिन, व्हाट डू यू डू?
2: आई एम एन इमिग्रेशन एक्सपर्ट.
1: वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. फिलहाल जतिन, ये इमिग्रेशन कराते कराते आप गाने का भी शौक रखते हैं. आई थिंक देयर इज समवन सिटिंग नेक्स्ट टू यू हु इज मोटिवेटिंग यू कि बस अब सबको सुनाओ अपनी आवाज, मुझे तो अच्छी लगती है ना.
2: माय वाइफ.
1: देखा कितनी अप्रिशिएटिव वाइफ है, वरना तो बीवियां जो है वो बोलने नहीं देती हैं. गाना तो बहुत दूर की बात है. तो ये जो गाना मैंने आपको ट्रैक सुनाया, आई एम श्योर आपने पहचान लिया है. सो विदाउट फर्दर डू, उम्मीदें काफी बढ़ चुकी हैं मेरी भी एंड ऑफकोर्स सभी सुनने वालों की भी.
0: कारियोगी.
1: ऑलराइट जतिन,
2: मुझे गाना है.
1: मैं तो गाने के लिए बुलाया सर आपको.
2: अच्छा, मुझे तो गाने का नाम बताना है.
1: नहीं, गाना है.
2: ओके.

0: Hoy, ajá.
1: Hoy, hoy, hoy. अच्छा गाया तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे गाते ही नहीं हो
0: जैसे गाते ही नहीं हो
1: छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ आपकी आवाज यहाँ छुपेगी नहीं तो ये गाना ऑफ कोर्स बीवी बैठी है तो उन्हीं के नाम है आश्रम
0: थैंक यू
1: नहीं नहीं आई एम आस्किंग यू
0: Yeah, of course, but just one thing I would like to tell you that ये एक लौटी movie है मेरे life में जिसमें मैंने अकेले देखी theater में you know
1: ये क्यों आपकी wife क्यों नहीं गई थी वीर ज़ारा देखने
0: नहीं उस time हम married नहीं थे ना
1: अच्छा तो उस समय कोई थी भी नहीं ज़ारा आपकी life में यहाँ हूँ यहाँ
0: शाम कैसी है आपकी
1: बात जाते नॉट बैड एट ऑल आपने काफी अच्छा गाया फॉर अ नॉन सिंगर थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एंड यू हैव अ ग्रेट इवनिंग बाय सेम This is what we do every single evening. अगर आपको लगता है कि आप जतिन से बेहतर गा सकते हैं या फिर आप गा सकते हैं द karaoke प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर यू ऑल्सो गिव मी अ कॉल 800-1062 पर
2: karaoke Beat 106.2 Fast Track Song of the Hour Brought to you by selfdrive.ae

0: keeping you company, Mel Mansi. While you're enjoying the music, we'd love to see you sing and perform. You know what? एक research कहती है कि दिन चाहे कैसा भी हो, जब शाम को आप गाने गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उससे आपका mood बदल जाता है. बस इतना कोशिश करना कि जब आप अपना mood यहाँ पे अच्छा करो, दूसरों का सुनते हुए mood ना खराब हो. अगर आप भी karaoke करना चाहते हो, then give me a call 800-1062 पे. We've got this one coming up.
1: कैसी अलग दिखमाल तेरी अखियां गुलाब के ना जावे साडा प्यार.
0: मित्रास का बॉलीवुड डेब्यू फ्रॉम तेरी बातों में सुलझा जिया. इसी के साथ अ सॉन्ग दैट आई कंप्लीटली लव. इन फैक्ट द एल्बम इज अमेजिंग. पति पत्नी और वो दो से वी गॉट आदित्य रिखारी.
1: जिन्नी सोनी लगदी है मनु किसी होर नु ना लगे लगे.
0: Coming up right here on Big 106.2, keeping you company. I'm Mansi. Good evening.
2: Big 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: मंडे की शाम है, while you stuck in jam, we jam with the karaoke, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, आवाज आपकी, कॉन्सर्ट आपका, गाड़ी में बैठे बैठे माहौल बनाते हैं हम, and joining us is Sneha to give tough competition to Jatin. Hi Sneha.
2: अरे बाप रे, ये competition है क्या?
1: कॉम्पिटिटिव रहेगा बंदा तो परफॉर्म अच्छा करेगा ना.
2: हाँ, तो कुछ प्राइस तो होना चाहिए ना.
1: मेरी मोहब्बत काफी नहीं है क्या स्नेहा आपके लिए? है कोई मोल नहीं है मेरी मोहब्बत का? स्नेहा, व्हाट डू यू डू?
2: आई एम अ बैंकर.
1: वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. समवन हु डील्स विद नंबर्स द एंटायर डे. आई थिंक दिस इज सच अ ग्रेट वे टू अनवाइंड, टू लिसन टू म्यूजिक, टू सिंग. सो डू यू सिंग ऑफन?
2: यस, आई एक्चुअली, यू एंड आई हैव मेट मेनी इयर्स अगो, क्योंकि बहुत पहले मेरा एक बैंड होता था और हमने परफॉर्म किया हुआ है.
1: यहाँ तो प्रोफेशनल आ चुकी है. वाह यार स्नेहा.
2: अभी आई डोंट नो, एंड आई हैव परफॉर्म विद अ लॉट ऑफ कैफेज एंड कॉर्पोरेट्स आल्सो. वो मेरा हॉबी था उस टाइम पे, अभी भी हॉबी ही है, बट आई डोंट परस्यू इट एज मच एज आई यूज्ड टू बिफोर.
1: अब जिसका बैंड रहा है वो तो बाकी जो सिंगर्स आए थे उनका बैंड बच गया है. तो विदाउट फर्दर डू, वुड यू लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग स्नेहा, और यू वुड यू लाइक टू डू द फर्स्ट स्टैंजा?
2: एनीथिंग, आई मीन, व्हाट डू यू से?
1: आई थिंक आई लव द फर्स्ट स्टैंजा, इट्स ब्यूटीफुल. तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूं.
2: ओके, लेट्स ट्राई.
1: चलो जी, नाउ वी हैव गॉट एन ऑफिशियल सिंगर हियर, सो काफी स्टैंडर्ड हाई हो गया मेरी भी कैरियोके का.
0: Karaoke.
1: Go Sneha.
3: Chhupana sakogi main wo raaz hoon, chhupana sakogi wo andaaz hoon.
1: Aha. गूंजता
3: जो दिल में तो हैरान हूँ, क्यों मैं तुम्हारी दिल की आवाज
1: हूँ सुन सको.

0: देखो आई नो बैंकिंग पेज यू अ लॉट ऑफ मनी बट यू शुड नॉट लीव सिंगिंग. प्लीज डोंट, यू आर अ ब्यूटीफुल सिंगर.
1: कोशिश करूंगी फिर से दोबारा शुरू करने की.
0: बैंड का नाम क्या था?
1: इट्स ओके अभी के.
0: अच्छा, लड़ाई होगी क्या बैंड वालों से? समझ गई. बात स्नेहा, थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग मी एंड ऑल माई लिसनर्स. आई डोंट हैव टू से यू आर माइंड ब्लोइंग एंड प्लीज डू स्टार्ट द बैंड अगेन एंड वंस यू डू दैट आई वुड डेफिनेटली कम एंड सी यू परफॉर्म लाइव.
1: लेट्स सी, होप सो.
0: बस अब ये प्लेटफॉर्म तो आ ही गया, वरना रोज शाम यहीं गा लेना. आई डोंट माइंड, दिस इज योर कॉन्सर्ट. हैव अ ग्रेट इवनिंग स्नेहा,
1: थैंक यू. बाय बाय. Karaoke.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:07।
1: बॉलीवुड।

0: cinema.
1: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
2: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: And we are playing the 5-second rule. I've got Sumesh with me. Hi, Sumesh.
3: Hi.
0: How are you? Good evening. Kaise ho aap?
3: I'm good, thank you. Aapka voice bahut acha hai aur aapka main radio roz sunta hu, so it's very good actually.
0: Hi, sweet. Thank you so much, Sumesh. Yeah. Bilal, we'll play the 5-second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. Aapne teen cheeze batani hai. Fatafat, 5 second ke andar tayar ho?
3: Yes.
2: 5-second rule.
4: Oh yeah.
0: All right. Quickly tell me 3 Bollywood actors ke naam jo A se shuru hote hain.
3: Amir Khan. Akshay Kumar.
0: अच्छा आमिर खान मुझे लगा टाइम खत्म हो गया अक्षय कुमार टाइम 5 सेकंड सुमेश फटाफट खेलना है कौन साइड से आपको बता रहे बीवी बैठी है
3: नहीं नहीं मैं अकेला ड्राइव कर रहा हूँ
0: अच्छा
3: I'm single, by the way.
0: या मुझे बता रहे हैं कि
3: नहीं नहीं
0: क्यों नो मैं भी सिंगल हूँ यू कैन फ्लर्ट
3: ओके
0: 3 ऐसी चीजें जो आप अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड में ढूंढ रहे हैं
3: सिंप्लिसिटी ऑलवेज फन लाफिंग
0: वेरी नाइस तो ये कहाँ ढूंढ रहे हैं आप डू यू लाइक यूज डेटिंग एप्स या फिर
3: मैं ड्राइव नहीं किधर भी नहीं बस अभी मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ तो 1:1 हो गया
0: फ्लर्ट करना मतलब आपको बोलना चाहिए था कि बात कर रहा हूँ शायद उससे क्या यार आजकल लड़कों को फ्लर्ट करना भी सिखाना पड़ता है मूविंग ऑन क्विकली टेल मी 3 गाने जिनमें दिल आता है
3: रब्ता
0: क्या
3: लापता लेडीज
0: अरे अरे अरे गानों में दिल आता है आप मूवी के नाम क्या बता रहे हैं और लापता लेडीज में कहाँ दिल आता है आपका ध्यान ना पूरा मेरी तरफ हो गया है अब सुमेश अब आपका ध्यान गेम में रहा नहीं
3: मैं 311 रोड पे हूँ एकदम ट्राफिक बम्पर टू बम्पर है और क्या बताऊँ
0: बस खत्म है अभी आप कह रहे थे मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ यहाँ मैंने आपको इतनी अच्छी बॉल दी और आपने जो है छोड़ दी
2: 5 सेकंड
3: नो प्रॉब्लम मैम
0: नहीं प्रॉब्लम सर मेरा ही है इसमें लड़कों का कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत कल आप खेला
3: क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहा है आपसे तो बहुत अच्छा लगा दैट इज विन विन फॉर मी
0: हाउ स्वीट सुमेश यू ड्राइव सेफ यू प्ले टेरिबली दो बट वी सो मच फन टॉकिंग टू
3: यू
0: बाय यही है 5 सेकंड रूल सुमेश की तरह बिल्कुल नहीं खेलना है अगर आप फटाफट जवाब दे सकते हैं देन 800-1062 इज माई नंबर फोन उठाओ नंबर घुमाओ

0: हार्डी संधू की आवाज में ये बात सुनते हैं आप 5 से 9 एंड ऑफ कोर्स यू प्लेइंग द 5 सेकंड रूल। मजेदार गेम है, आपको मिलते हैं 5 सेकंड। मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर। आई नो इट साउंड्स वेरी वेरी इजी, वेट अंटिल यू प्ले दिस गेम।
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: फिलहाल गप्पे मारने के साथ साथ मैं काम की बातें भी आपको बताती हूँ। इफ यू आर समवन हु स्पेंड्स टू मच टाइम स्क्रॉलिंग टू फाइंड द राइट रेंटल कार, यू हैव टू मीट सिया। सेल्फ ड्राइव्स एआई कार रेंटल असिस्टेंट। जस्ट टाइप योर बजट, योर कार टाइप और एनी प्रेफरेंस एंड सिया इंस्टेंटली आपको राइट कार रेकमेंड करेगी। नो एंडलेस स्क्रॉलिंग, जस्ट अ क्विक एंड वेरी वेरी इजी बुकिंग प्रोसेस। आज ही विजिट कीजिए selfdrive.ae।
2: Here's your Autopulse update powered by Self Drive Mobility. I'm Priyanka Sharma. A big launch from China, Xiaopeng or XPeng as some of you may know it, has unveiled the L03, an electric SUV undercutting the Tesla Model Y by up to $10,000 across Europe. 445 kilometers of range, 10 to 80 charge in just 20 minutes. Orders in more than 60 countries, deliveries before this year's end. And closer to home, Dubai is making the last mile easier yet again. RTA has approved a 5-year plan to link 25 residential communities from Dubai Marina to Al Rigga with cycling tracks, shaded walkways and shared mobility hubs. 63 metro and bus stations in the mix too, all expected to be complete by 2030. And the UAE is wiring its skies for the future. New radio frequency rules approved for air taxis and delivery drones, covering everything from the aircraft above to the vertiports on the ground. That's your Autopulse update. Date, stay tuned.
1: Big 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: फिलहाल वी प्लेइंग द 5 सेकंड रूल. इट्स अ फन गेम. यू गेट 5 सेकंड्स. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज. 3 चीजें आपने बतानी होती हैं फटाफट खटाखट 5 सेकंड के अंदर. ऑन द फोन लाइंस निदा. हाय निदा.
2: हाय मानसी, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, हाउ आर यू?
2: जस्ट हेडिंग बैक टू होम फ्रॉम वर्क.
1: सो व्हाट डू यू डू निदा?
2: आई वर्क इन अ स्कूल एजुकेशन.
1: Oh, very nice.
2: So we're doing more. Yeah,
1: you're a teacher.
2: No, I'm not a teacher. I'm from administration.
1: Acha. So Nida, are you excited? The game is very simple. आपको मिलेंगे 5 seconds. मैं आपको दूंगी कुछ categories. 3 चीजें बतानी है 5 second के अंदर. तैयार हो?
2: Yeah, I'll try.
1: All right.
0: 5 second rule.
3: Oh yeah.
1: Quickly tell me 3 things that are orange in color and आप खा भी सकते हो. मिठाई का हलवा. That's the best thing and orange color की and it's the yummiest thing ever. All right, moving on. Quickly name 3 रणवीर सिंह की मूवीज.
2: धुरंधर.
1: टाइम खत्म हो गया. धुरंधर है वो. Quickly name 3 green vegetables for me. वेरी नाइस. 3 मूवी टाइटल्स जिनमें दिल आता है. द वर्ड दिल.
2: हम दिल दे चुके हैं. दिल चाहता है.
1: और दिल से अरे
2: दिल
1: हो गया. टाइम का लास्ट.
2: ओह माय गॉड.
1: 3 things दैट यू हेट अबाउट योर वर्क.
2: लॉन्ग आवर्स. पेरेंट्स.
1: हो Why do you hate the parents? Because they keep asking questions or they keep complaining?
2: See, children are very nice, but the parents are... yeah, no comment.
1: Yeah. 3 things that you'd like to change about your husband.
2: He needs to listen more, work hard, and work more at home.
1: Time khatam ho gaya. What was the last one?
2: Work more at home.
1: Work more at home. I think that is a universal problem jo har desi biwi ko hai. Hit or miss tha Nida. Matlab you got a few of them right, but most of them were not within 5 seconds.
0: 5 second rule.
3: Oh yeah.
1: But I have to say the most honest teacher. All right, Nida, you have a great drive back home. I hope you enjoyed playing the game.
2: Thank you so much. Thank you. Bye.
1: Bye. Yeah, 5 second rule. अगर आपने खेलना है, एक ही rule है. You have to be very, very quick. 5 second में जवाब देने हैं. And call करना है मुझे 800-1062 पर.

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाना?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हां जी, ये है बिग थ्रिल। मैं हूं मानसी। आज है 20 जुलाई 2026। अब नाउ लेट मी टेक यू टू 20th of July 2007। जस्ट थिंक, आप क्या कर रहे थे 2007 में इस दिन? अब जो भी कर रहे थे, आई थिंक एवरीबडी अराउंड अस वॉज लुकिंग फॉर टिकट और वॉज ट्राइंग टू वॉच दिस मूवी, जो 2007 की सबसे बड़ी मूवीज में से एक। यस, ऑफकोर्स मैसिव कमबैक ऑफ गोविंदा। इनफैक्ट सलमान खान ने बहुत पुश किया था डेविड धवन को इस मूवी में गोविंदा को लिया जाए, बिकॉज ही वॉन्टेड अ मेजर कम बैक, बिकॉज हिज करियर वॉज गोइंग नो वेयर, एंड दिस मार्क्स गोविंदा एंड सलमान की एंट्री बैक ऑन द बिग स्क्रीन विद अ डेविड धवन मूवी। अब दिस मूवी इज जस्ट लाइक दाल चावल आफ्टर अ लॉन्ग वीक। इट इज़ वेरी वेरी कम्फर्टिंग, एंड ये उन फील गुड मूवीज में से है जो बैकग्राउंड में चलते रहे एंड यू जस्ट वॉन्ट रिलैक्स एंड वॉच। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। कैटरीना कैफ, साथ में गोविंदा एंड लारा दत्ता, सलमान खान। मैं आपको एक डायलॉग सुनाती हूँ।
2: भास्कर, राइट?
3: हाँ, और आप?
2: मैं वही हूँ जिससे आप मिलने आए।
3: लव गुरु, तुम ही हो साक्षात लव गुरु।
2: तो ये आपका पहला प्यार?
3: मेरा पहला प्यार? ये मेरे पूरे खानदान का पहला प्यार है। इससे पहले मेरे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, किसी ने भी इस लेवल पे आकर मोहब्बत नहीं की।
2: बताइए,
1: अगर याद आ गया ये कौन सी मूवी है जो आज ही के दिन बैक इन 2007 रिलीज हुई थी। गिव मी अ कॉल 800-1062 पर, टेकिंग यू बैक टू 2007 विद दिस आइकॉनिक डेविड धवन मूवी। आशा
3: नहीं, तीन तीन

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है. देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे.
1: बिग टाइम चेक. गुड इवनिंग द टाइम राइट नाउ 7:06.
2: Bollywood.

0: बॉयज, मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: This summer, there are surprises all across Dubai, waiting to be discovered. More offers, more experiences, more reasons to celebrate. With E&, the strategic partner of Dubai Summer Surprises, enjoy up to 70% off on devices and accessories from 2nd of July to the 30th of August. Learn more at www.e&.ae. T's and C's apply. E&, strategic partner of Dubai Summer Surprises. E&, go for more.
3: Namaste.
4: Hola.
3: Assalamualaikum.
5: Bonjour.
6: Ni hao.
5: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
7: InsuranceMarket.ae. We insure the cat. We also insure the yacht the cat is sitting on. Pet, yacht, car, health, home, and more. Call 800 Alfred 24/7. InsuranceMarket.ae.
8: It's hot it up with big tickets.
9: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
8: 500,000 dirham winners. And 1 million dirham big spin game.
9: Buy now at BigTicket.ae.
10: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
11: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
12: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
13: 36 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 33। फिलहाल ह्यूमिडिटी है 56% पर।
1: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लगी, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: Sia self-drives new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
3: Wow, your hair color looks stunning.
4: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
3: Yeah, right.
4: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
3: Really?
4: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
3: I'm buying it right now.
4: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
5: When your skin feels good, confidence follows you everywhere. At Zuleika Hospital and Medical Center, our dermatology experts treat everything from acne, pigmentation and hair loss to skin allergies and aging concerns. Get healthier and clearer skin that looks and feels natural with our exclusive and affordable dermatology packages. Zuleika cares for your skin, for you. Call 600-52442 to book your appointment.
6: The Big Mix miss kiya gaya.
7: तुम कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
8: यू से बताओ बॉलीवुड सेलिब्रिटी नेम, गो।
9: ओके, उर्मिला मातोंडकर।
8: अब यू से बताओ मूवी।
9: ओके, ये मुश्किल है।
8: जल्दी। क्या यार,
9: आई नो काफी होंगे बट एकदम नहीं आ रहा जहन में अभी।
8: यू मी और हम थी, आई कैन थिंक ऑफ वन नेम। मूविंग ऑन, यू से बताओ प्लेस। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यू से बताओ थिंग, ये तो सबको पता है। बचपन में यही तो आता था, यू से और किसी को कोई थिंग आता ही नहीं है। बट यू प्लेड रियली रियली वेल। आई नो मैंने कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट कर दिया आपके लिए यू देख के।
10: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 p.m. The Big Mix with Zohra. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
11: Not really big but still slow moving traffic आपको मिलेगा अगर आप शेख मोहम्मद बिन जायद पे हैं। 12 से 15 मिनट का डिले, still slow moving traffic on शेख जायद as well. Not the 45 minute but 34 minute delay, 10 minute कम। इसके अलावा this traffic अगर आप जा रहे हैं towards Dubai Design District, unusual traffic in that area today. Patchy traffic at the moment near Jebel Ali Industrial Area. Anything else you'd like to report मुझे बताइए 800-1062 पर।
10: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा।
2: 106.2 The Beat of Bollywood.

0: शिल्पा राव की आवाज मेरी आवाज 5 and 9 right here on Big 106.2. फिलहाल I'm going to take you back to 20th July 2007. I'm talking about this movie completing 19 years today. 2007 की सबसे बड़ी मूवीज में से एक, एंड लाइक आई मेंशनड, ये मूवी इज दाल चावल एंड अचार आफ्टर अ लॉन्ग टायरिंग वीक. इट इज सो कंफर्टिंग.
1: ओए हेलो, ये क्या कर रहा है तू भास्कर? प्यार किसी को और किस किसी को?
2: क्या किसी को क्या किया? उसी को तो किया जिसका बनने वालों में पिया. यही तो है प्रिया. She is the lucky one.
1: ओ हीरो, पता ये कौन है? प्रिया जयसिंह, राज जयसिंह की बेटी, 1000 करोड़ की मालकिन. अबे तुझसे तो क्या, ये मुझसे नहीं बटेगी. Forget about it. No chance, impossible.
0: प्रेम भास्कर, लव गुरु, कैटरीना कैफ, लारा दत्ता. If you remember, डेविड धवन की ये कौन सी मूवी है? Then 800-1062 is the number to dial. फिलहाल coming up, break your spar. दिलजीत with अलका याग्निक, इला अरुण, the brand new version from the crew.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Celebrating 19 years of this iconic Govinda Salman movie, David Dhawan ki movie. Aaj ke din 20 July 2007 mein release hui thi. Govinda ka massive comeback. And right now I've got Fahad. Kaisa raha Monday?
2: Yeah, it was kind of hectic. Last night we were watching match, the final football.
1: Oh yes, yeah. I mean I don't know anything about football. Kaun si team jeeti by the way? Dekho, mujhe ye bhi nahi pata. अच्छा, आपको खुशी मिली उनके जीतने से?
2: Yes, I was supporting.
1: चलो जी, देन मुबारक, आपकी सपोर्ट करने वाली टीम जो है वो जीत गई है. फिलहाल वी टॉकिंग अबाउट दिस मूवी जिसने आज 19 साल कंप्लीट करे हैं. प्रेम भास्कर लव गुरु मूवी का नाम क्या था फहद?
2: पार्टनर.
1: एब्सोल्युटली करेक्ट. कितनी बारी देखी है आपने मूवी?
2: बिकॉज आई वॉज इन स्कूल आई थिंक दैट टाइम. कॉमेडी एंड यू नो गोविंदा कॉमेडी दैट टाइम इट वॉज लाइक इतनी खुशी मुझे आज तक न्यू ईयर दैट
1: लाइक खुशी. आई नो, कमाल मूवी थी और गोविंदा का कमबैक था. फिलहाल जब हम स्कूल कॉलेजेस में थे, अब हम 2007-2008 के बच्चे हैं, तो हमारे स्कूल में भी एक भैया या एक दीदी होते थे जिन्हें सब लव गुरु कहते थे. वो यू नो सेटिंग वेटिंग कराते थे. तो आप लव गुरु थे या आपके स्कूल कॉलेज में कोई लव गुरु था जस्ट लाइक प्रेम?
2: आई एम अ बिग फैन ऑफ सलमान खान.
1: सो यू वर द लव गुरु देन?

0: Yeah.
1: अच्छा
0: because he used for Lara Dutta was the same tactic.
1: Yeah. So, at a time कितने थे आपके इस?
0: One at a time.
1: So any trick जो आपने इस movie से सीखी थी?
0: Yeah, I started doing bodybuilding and stuff.
1: Whoa, very very nice. Yeah. Katrina Kaif was amazing as Priya in the movie, but I did enjoy Lara Dutta's character more. Any favorite from the movie?
0: Gana Candy Po.
1: ओ सुनी दे नखरे सुने लग दे. चलो जी, सेलिब्रेटिंग 19 इयर्स ऑफ पार्टनर विद दिस सॉन्ग, आशा एम गोइंग आउट टू ऑल द लव गुरुज इंक्लूडिंग फहाद. हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय.
0: या थैंक यू सो मच, बाय.

0: 96.2 The Beat of Bollywood. Hello.
1: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना.
2: हेलो,
1: सुन रहे हो ना?
2: Hey,

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. Welcome to the last of the show. And you know, कहते ना देर आए दुरुस्त आए. मैं UAE में 2014 से हूँ, but finally 2026 में मैंने अपना license लिया. And I think that is the best thing that has happened to me in 2026. And now, if you also have a UAE's driver's license, it is recognized in a lot of different countries. Yes, globally, आप अपना license UAE का ले जाके बहुत सारी और कंट्रीज में भी ड्राइव कर सकते हैं. मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी. ऑल्सो एक डिटेल देनी है, अगर यहां मजा आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे और मजा आएगा. गो एंड चेक अस आउट 106.2 बिग एफएम. इट इज किक स्टारिंग दिस आवर विद द मूवी दैट आई थिंक आई वॉच इन एवरी टू मंथ्स, बिकॉज इम्तियाज अली एंड ऑफ कोर्स दिलजीत दोसांझ.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: to The Beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 36 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 34, फिलहाल ह्यूमिडिटी है 58% पर।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, this is The Big Thrill with Mansi. And great news for all those. मैं खुद को भी इसमें include कर सकती हूँ finally, जिनके पास UAE का driver's license है. The UAE driving license is now recognized in 34 countries and international destinations, making travel more convenient for license holders. Depending on the local regulations, you may be able to drive legally, rent a car with ease, and even exchange your UAE license for a local one without taking a full driving test. The move reflects UAE's high driving standards and growing global recognition. But before traveling, always check the latest driving and licensing requirements of that destination jahan aap ja rahe hain. Recognized destinations include UK, France, Germany, Italy, Spain, Netherlands, Switzerland, Greece, South Korea, China, aur bhi bahut sare hain. Also covered Portugal, Belgium, Denmark, Norway, Sweden, there's Austria, Czech Republic, Hungary, Romania, Azerbaijan, Uzbekistan. तो बस ये कमाल न्यूज है कि अब अगर आपके पास यूएई का ड्राइवर्स लाइसेंस है तो बहुत सारी और कंट्रीज में आप गाड़ी चला सकते हैं. फिलहाल मेरे जैसे न्यू ड्राइवर्स अभी अपना यहीं तक रख रहे हैं, द दायरा इज यूएई, क्योंकि अभी तक मैं डेरा शारजा ही नहीं पहुंची हूं. तो किसी और कंट्री में गाड़ी चलाना, आई डोंट थिंक सो हैव द कॉन्फिडेंस येट.
2: तेरी

suddenly miss Himesh Reshammiya. I want him back. I want Himesh Reshammiya back in my life. Just like Imran Hashmi is making a comeback. Can't wait. जो जेंजीज को फील हुआ था सैयारा देखने के बाद, ऑफकोर्स हम इतने ड्रामे नहीं करेंगे. आई थिंक दैट्स गोना बी द एग्जैक्ट सेम फीलिंग व्हेन वी गो एंड वॉच इमरान हाशमी. आई एम टॉकिंग अबाउट आवारापन 2. पहला ही गाना रिलीज हुआ है. कांट वेट फॉर द एंटायर एल्बम, क्योंकि इमरान हाशमी विशेष फिल्म्स गाने कमाल होंगे ही. एंड वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट सैयारा, तो इस गाने के साथ याद करो पिछले साल इसी टाइम ड्रिप लगा लगा के जेंजीज ये मूवी देखने जा रहे थे.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Syed Kadri Mithun Subodh Sharma from Avarapan 2. इसी के साथ time for me now to say bye bye, good night. मैं आपसे मिलूंगी कल. मंडे को मन लग गया है, अब ट्यूजडे. यू नो वेंसडे से मूड अच्छा हो जाता है क्योंकि वीकेंड आ जाता है. इनफैक्ट अगस्त में एक लॉन्ग वीकेंड भी आने वाला है. बेस्ट पार्ट ये है कि दो दिन में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी दी एंड पे आ जाएगा. बड़ा भारी रहा है ये मंथ ऑफ जुलाई इफ यू बिलीव इन रेट्रोग्रेड्स. आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन हैज बीन अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम इन द मंथ ऑफ जुलाई बिकॉज इट वॉज अ रेट्रोग्रेड. फिलहाल इट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द रेट्रोग्रेड, सो या थिंग्स शुड गेट बेटर आफ्टर 23rd. मैं यहाँ से जाती हूँ. जाते जाते बता दूँ कि आप अगर अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ फन. डू दैट राइट अवे. 106.2 बिग एफएम इट इज. यू कैन से हाय टू मी, आई एम मानसी टॉकिंग. आई विल बी टॉकिंग टू यू टुमारो 5 से 9, लीविंग यू विद
2: Authentic, original, and better than our

0: of Bollywood. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Insurancemarket.ae. Flights booked, bags packed. Brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, insurancemarket.ae.
2: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
3: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
0: Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, that's my song by E and

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय
1: insurancemarket.ae
0: द बिग जेल where every song feels like a deep breath after a long day only on big 106.2 the beat of bollywood

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पाँच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। द बिग जेल brought to you by insurancemarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. Aap sun rahe hain Big 106.2, the beat.

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।